हैप्पी हैप्पी फ्राइडे क्राइस्टचर्च, वेलकम टू रेडियो केजे। एवरी फ्राइडे की तरह एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं और यस, आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके साथ साथ हमारे पास गेस्ट इन द स्टूडियोज भी है। उधर हमारे जो रेडियो केजे का जो फेसबुक लाइव है वहाँ पर भी हम जुड़ चुके हैं और हमारे कुछ अच्छे साथी जो हर वीक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, दे आर ऑल्सो विद अस। और जी हाँ, कल जैसे हमने कहा अभी हम उधर ऑफिया बात कर रहे थे, कल शालिनी जी का हरियाली थी जो 2026 ये है, तो वी हैव गॉट सम पीपल हु आर कमिंग टू जॉइन अस टुमारो देयर। पर चले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे फ्राइडेज का जो शो होता है, अवर नेमिंग स्पॉन्सर्स, जी याद रखिए हमारा फ्राइडे का जो शो है ये हम आप तक लेकर आ रहे हैं द मैन हिमसेल्फ, जो बहुत ही जल्द आज हमारे साथ स्टूडियोज में भी आ जाएंगे। दोज ऑफ यू आर ऑन द लाइव, डू नॉट गो एनीवेयर। जग्गी भोपाल, यस, फ्रॉम अरिस्टो रियल स्टेट। भाई घर लेना है बेचना है, एक ऐसे बंदे को आप हम आपको दे सकते हैं, वह दे नहीं सकते, वह ऐसे बंदे से मिला सकते हैं हु जिनका अप फ्रंट कोई भी यू नो हिडन कॉस्ट नहीं होता है, एंड दिस गाय ओनली वर्क फॉर यू मेकिंग श्योर दैट आपका जो ड्रीम हाउस है या तो आप उसे ले सके या ड्रीम हाउस को अगर आपको बेचना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो डू नॉट गो एनीवेयर, आज जग्गी भोपाल इज गोना बी इन द स्टूडियोज बहुत ही जल्द। और चले बाकी हमारे स्पॉन्सर्स है, सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स, इनको भी हम बारी बारी से याद कर लेते हैं। जी हाँ, NZ न्यूजीलैंड क्लिनिकल मास्टरी, इफ़ यू हैव अ ड्रीम ऑफ मूविंग टू न्यूजीलैंड, एज नर्स बनना है आपको, एंड इफ़ यू नो समबडी दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे इंडिया हो, चाहे फीजी हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ पर से भी, इफ़ दे वांट टू मूव टू न्यूजीलैंड स्पेशली इन क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड क्लिनिकल मास्टरी, आप इनको संपर्क कर सकते हैं और आपका जो ड्रीम है, आपका सपना जो ये पूरा करेंगे। और हमारे साथ एल्विना कुमार जी, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, इको ट्रेवल्स, यस गाइज, हम भी अभी रिसेंटली वियतनाम गए थे। अगर आप ऐसे जाते हैं जहां पर आपको कंट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता है, सो यू नीड समबडी जो आपका काम आसान कर सके, इको ट्रेवल्स इज द नेम टू रिमेंबर। इनके साथ साथ रीइमिग्रेशन, जी हां देव जी, कहां पर गुम हो आप? देव जी को हम किसी दिन स्टूडियोज में लेकर आएंगे ताकि आप भी इनसे बात कर सके, आप भी इनसे वार्तालाप कर सके, एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। आपको अगर कोई फैमिली आपको न्यूजीलैंड में है एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट रेसिडेंसी, वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजा, कुछ भी हो, रीइमिग्रेशन इज द नेम टू रिमेंबर। टच एंड ग्लो, यस टच एंड ग्लो, आज लेडीज नाइट है तो आई एम प्रीटी श्योर काफी जो लेडीज है टच एंड ग्लो ऑलरेडी जा चुके होंगे बहुत ही खूबसूरत दिखने के लिए। और कल जो हरियाली थी जाए यहाँ पर भी, तो आपको अगर बहुत ही प्यारा दिखना है, वेल पीवा और ऑथेंटिक कोरियन जो प्रोडक्ट्स है ये इस्तेमाल करना है, तो आपको टच एंड ग्लो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। MCK न्यूजीलैंड मनीष कम्युनिटी के लोरिन जी, आप शायद हमारे साथ बहुत ही जल्द शामिल हो जाएंगे ऑन लाइव। आज आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं आया, अगर आप अभी रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद हम Maybe I can play it, but depending if you are there. तो जी हाँ, मनीष कम्युनिटी के यहाँ से हम लोरेन और रॉबर्ट जी को याद करना चाहते हैं। और आपके घर पे भी कोई है जिनको केयर की जरूरत है, इफ समबडी नीड्स अ केयर, मनीष कम्युनिटी केयर इज द नेम टू रिमेम्बर। नैथन मिगलानी फ्रॉम स्क्विरल साउथ आइलैंड, जी हाँ घर लेने का सपना तो सभी है। जगी जी आपको घर दिखा सकते हैं, घर तक लेकर जा सकते हैं, पर उसके लिए अगर आपको फाइनेंस, यस पैसा, पैसा कौन देगा भाई, तो पैसा नैथन मिगलानी फ्रॉम स्क्विरल साउथ आइलैंड। इनके साथ साथ आरी बेंस, इनको आज हमारे साथ स्टूडियोज में शामिल होना था, पर वेल वी हैव गॉट अ फुल हाउस सो दे कुड नॉट जॉइन अस, बट आई थिंक आने वाले दिनों में वॉच आउट स्पेस, जब हम आपको बताएंगे कि व्हेन दे आर जॉइनिंग अस। मूविंग ऑन, फैन फेयर इवेंट प्लानर्स, बुकिंग अक्रॉस बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर्स, कल्चरल इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट सेटअप्स, रिलायबल वेडिंग डेको एंड सेटअप पार्टनर एट फैन फेयर इवेंट्स, दे बिलीव दैट इवेंट्स ब्रिंग पीपल टुगेदर।

और कल जो हरियाली तीज हो रहा है यहाँ पर, फिनफेयर सिल्की जी और आपका जो टीम है ये यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एनजेड इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंसेस होना बहुत ही जरूरी है, यू नेवर नो व्हेन यू गोना रिक्वायर इट। शिवम अरोड़ा जी अभी फिलहाल के लिए जो फिजी में एंजॉय कर रहे हैं, शिवम जी अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। चले वेरी क्विकली विल गो टू फेसबुक लाइव। और एस जे नंद जी कैसे हैं, हाउ आर यू, वेलकम टू आवर शो। और डेलिना अम्मा सुगमानो, हाउ आर यू। और पद्मा आंटी जी आप भी हमारे साथ जुड़ गए, डू नॉट गो एनीवेयर गाइस, क्योंकि आई विल क्विकली शो यू ये हमारा हिंदू विजडम वर्कशॉप। इट्स गोना बी वेरी जो आपके लिए बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन, ये कब हो रहा है, सो डू नॉट गो एनीवेयर। पद्मान ठीक है, जाइए मत। एंड एस जे नंद, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू भाई, साई राम आपको भी, सो स्टे देयर टू फाइंड आउट मोर। चले आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा शिवम अरोड़ा, एनजेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है, सो कॉन्टेक्ट हिम। और इनका जो जानकारी है रेडियो के जे के फेसबुक पेज पे भी मिलेगा। पीपी प्रोडक्शन, प्रतीक पटेल जी, यस पीपी प्रोडक्शन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए आपका इवेंट है, कल इवेंट हो रहा है, हर वीक क्राइस्टचर्च में एवरी वीक दो तीन इवेंट हो रहा है, आपके घर पे कोई फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन है, एनीथिंग, एक अच्छे फोटोग्राफर की तलाश में तो पीपी प्रोडक्शन नाम जरूर याद रखिए। यूनिक एथनिक कलेक्शन, यूनिक और एथनिक कलेक्शन के लिए अभी हम जैसे जैसे साल के एंड में जाएंगे तो जी हाँ नवरात्रि और इसके साथ साथ गरबा सीजन आया जाएगा, दिवाली भी आया जाएगा, तो अपना जो ऑथेंटिक वेयर है इसको पहले से ही संभाल कर आप ले लीजिए ताकि लास्ट मिनट आपको रश ना करना पड़ सके। तो यूनिक एथनिक कलेक्शन ये नाम याद जरूर रखिए। ग्लोबल फ्रेश, जी हाँ ग्लोबल फ्रेश, वीकेंड शॉपिंग कहाँ जा रहे हैं पदवान जी, वीकेंड का शॉपिंग हो गया, डेलिना अम्मा वेरी क्लोज टू योर हाउस, यस ऑन कोना ऑफ एनएक्स एन ब्लेनिम रोड, ग्लोबल फ्रेश जहां पर से हर वीक हर वीकेंड फीजी से फ्रेश वेजेस, इनके साथ साथ कोई फ्रोजन गुड्स आपको चाहिए तो ग्लोबल फ्रेश इज द नेम टू रिमेम्बर। डीजे गिडियन, कल जो हरियाली तीज हो रहा है यहाँ पर, साउंड सिस्टम डीजे गिडियन का है, तो आप भी अगर एक अच्छे डीजे की तलाश में, साउंड सिस्टम की तलाश में और लाइटिंग की तलाश में तो डीजे गिडियन नाम जरूर याद रखिए। करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल, गाइज देखिए हमारे स्टूडियोज कितना ब्राइट है, जगमग है, तो आपको भी घर पे लाइट लगाना है। और अभी लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम फ्यूल टू ईवी कार्स, अगर ईवी कार का जो पोर्ट है यानी जो पॉइंट है जहां पर आप चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट चार्जिंग पोर्ट, तो इसके लिए ये भी सेटअप कर सकते हैं, चाहे गेट हो, एनीथिंग टू डू विद हाउस और इलेक्ट्रिकल, करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल ये नाम जरूर याद रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीले धवलिया फ्रॉम एसबीजी अकाउंटिंग, अच्छे अकाउंटेंट की तलाश में हम भी है, अच्छे अकाउंटेंट की तलाश में हम भी आप भी है, एंड अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड यहां पर यू नीड टू कीप योर अकाउंट्स अप टू डेट। ओके गाइस, सारे जो हमारे सपोर्टर्स है और हमारे जो मेजर स्पॉन्सर्स है, हमारा जो फ्राइडे शोज का नेमिंग स्पॉन्सर्स जगी भोपाल इन द हाउस, वेरी सून हम आप उनसे भी मिलने वाले हैं, हर समय की तरह एकदम यू नो हीरो की तरह दिख रहे हैं, शायद आज हमको डांस करके भी दिखाएंगे, पिछली बार उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सॉन्ग करेंगे, तो आज हम देखेंगे कि आज सॉन्ग के साथ हमें डांस भी करके दिखाएंगे या नहीं। पर चले चलते हैं गाइस, जैसे हमने कहा कि हम कुछ दिनों से आपके साथ यहाँ पर क्राइस्टचर्च में जो वर्कशॉप हो रहा है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। रिमेंबर हमने आपको एक दो बार ये पोस्टर दिखाया है, हमारे रेडियो केजे के फेसबुक पेज पे भी है, व्हाट इज दिस, हाउ इन्फॉर्मेशन जो ये या हाउ यूजफुल इट इज़ फॉर पीपल लाइक अस एंड पीपल लाइक यू आउट देयर, ये पूरी जानकारी हमारी जो टीम है यानी जो टीम है ये से जो यहाँ पर वर्कशॉप हो रहा है ये लेकर आए हैं बहुत ही जल्द, चले हम उनसे भी बात करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज गिव मी अ ब्रेक व्हेन आई गो इन अ सॉन्ग, एंड जब हम सॉन्ग में जाएंगे सो आई कैन गेट द हमारे जो कैमरा रेडी ताकि यू कैन सी हु इट इज़ ओवर हियर।

Name right? Yes. Did I read the name right? So yes, definitely rock the show. और रागनी जी कहीं जाइए मत, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाला है. इनके साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं टच एंड ग्लो, यस आवर नेमिंग स्पॉन्सर्स फॉर द संडे एंड आवर फ्राइडे शोज टच एंड

0: वेलकम बैक टू रेडियो कैच लोकल. हैप्पी फ्राइडे एवरीवन. कैसे हैं आप सभी? यस, हर फ्राइडे की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं. इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों के लिए वी हैव गॉट समबडी इन द हाउस हु इज गोना बी टेलिंग अस अ लॉट मोर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउसिंग मार्केट. यस गाइस, याद रखिए, घर लेना हर किसी का सपना होता है. और पर घर लेने से पहले अगर शायद इफ यू आर ऑलरेडी इन अ हाउस एंड यू आर थिंकिंग आई नीड अ न्यू हाउस, आई नीड टू मूव इन अ न्यू एरिया, वो एरिया न्यूजीलैंड में कहीं भी हो सकता है. सो यू नीड टू गो टू अ रिलायबल पर्सन, रिलायबल पर्सन हु इज नॉट गोना मेक मनी आउट ऑफ यू, बट एट द सेम टाइम नेवर नो, माई सेव मनी फॉर यू एंड देन ऑल्सो गेट यू इन टू द ड्रीम हाउस. सो वी हैव गॉट द मैन हिमसेल्फ इन द हाउस टुडे और बहुत ही जल्द आप उन्हें लाइव पे भी देखेंगे. जगी जी, कैसे हैं आप?
1: गुड सर.
0: आप शुरू कीजिए, हम वीडियो आप पे दिखा दें कौन बैठे हैं आज घर में हमारे.
1: क्या शुरू करवाना चाहते हैं हम?
0: What's happening in terms of just एक brief introduction हो जाए जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं.
1: राइट, हाँ जी. जगी है सर मेरा नाम, जगी भोपाल, एंड आई वर्क एज अ रियल एस्टेट एजेंट हियर इन क्राइस्टचर्च. सेल लोकली, लिव एंड सेल वन एट दिस पॉइंट, एंड वी डील विद होम एंड पैकेजेस, सेक्शन सेल्स एंड एग्जिस्टिंग हाउसेस, सेलिंग, अपसाइजिंग, डाउनसाइजिंग, कुछ भी करना है. Or even if somebody just wants free advice as well, I'm always on the phone, always happy to have a discussion. And yeah, this is who we are. Just easy to reach on the phone or text or email or whatever works.
0: Jagiji, from the last time we spoke to you, and I know every day housing market mein kuch na kuch changes hota hai.
1: Yes.
0: Has something happened like within the last few weeks, something new or which, you know, our listeners or jo log dekh rahe hain should know?
1: Yeah, thoda productive, and it has been a really busy week or 2 weeks. For the last week, we had some really nice new listings come up to the market, but thoda buyer sentiment bhi thoda sa up hua hai. I don't know whether I just had some good

0: आप तो बहुत ब्रेव हो यार. तो जी गाइस, दैट वाज मिस्टर जग्गी एंड दोज ऑफ यू आर सेंडिंग मी पर्सनल मैसेज, इज ए सिंगल इज नॉट. So guys, I'm joking. Okay, this is just a joke. Okay guys, thank you so much. हमारे साथ जितने लोग आज जुड़े थे और आप लोगों के साथ आज ऐसे ही हंसते खेलते खेलते निकल गया. गीता सेगरन जी, गीता जी हेलो तो कह दो. क्या क्या नाराजगी है गीता जी? देखो आज हमने आपका नाम लिया सो यू कान से कि हमने आपको डेडिकेट नहीं किया. इसके साथ साथ ज्योति जी आप भी हमारे साथ है. दैट वाज आवर शो फॉर टुडे. आज जीपी जी जैसे आपको पता है शी इज एट इवेंट. सो लेटर ऑन यहाँ से हम जा रहे हैं जहाँ से बहुत ही जल्द हम लाइव करने वाले हैं रिगार्डिंग शो जो कल हो रहा है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. दिस इज आरजे क्रिश एंड विद द एंटायर टीम जो आज यहाँ नहीं, एंटायर टीम इज मी एंड जीपी. So look after yourself. We'll see you guys very soon. Bye. Okay guys, so yes, that was our show for today. Thank you jitne log hamare saath jude the. Enjoy the rest of your weekend. Hum milenge aapko kab? Yes, Sunday ko. Tab tak ke liye apna khyal rakhe. This is RJ Krish signing off from the Plains Media Studios. Achha chalta hu duaon mein yaad rakhna.
1: Meri zikr ka zuba pe swaad rakhna.
0: Till we meet again, look after yourself.
1: That's it for this week. This is your host RJ Krish and RJ Jibby.
0: Keep listening to Radio KJ Local only on Plains FM 96.9. And for more, follow us on Facebook, Radio KJ Local.
1: Also, like and subscribe us on Apple Podcasts to never miss an episode. And find past episodes on plains.org.in.